0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और दरवाजा बंद करके अब काफी देर हो गई। बाप खुश है कि जनाब बेटा तो आज माशाल्लाह आज शुक्र है आज अबू बकर बात मान गया और इतना देर अंदर इबादत कर रहा है। ये पता नहीं कि उसने तो तुम्हारे खुदा का सत्यानाश कर दिया। थोड़ी देर जब काफी देर के बाद आए दरवाजा खोला अंदर गए देखो तो खुदा टूटा पड़ा गुस्से में आग बगो। अब देखो यानी इसके बाद भी हिदायत नहीं मिलती। आंखों से देख चुके हैं कि जिसको मैं खुदा बनाए हुए हूँ इलाह बनाया हुआ है मैंने काबिल एहतराम बनाया हुआ है जिसको मैं मसा करता हूँ तबर्रुक पकड़ता हूँ जिसके आगे खड़े होकर मैं हाथ बांध के क्योंकि ये अल्लाह के महबूबों की शक्ल में है और ये देवताओं की शक्ल में है वो टूटा हुआ है। ये नहीं समझते कि जो अपने आप को नहीं बचा सका वो कैसे अल्लाह का मुकर्रब और अल्लाह का बंदा हो सकता है अल्लाह के करीब हो सकता है। नहीं अबू बकर तोड़ने वाले पे गुस्सा है यहाँ अकीदा समझ अपने अकल पे गुस्सा नहीं आ रहा। आज भी आप किसी को कहें भी कब्र पे सजदा न करो कहेगा वाह भी हो ना यानी तुम पे गुस्सा है उसको अपने अकल पे कोई मतलब नहीं कि यार मैं अल्लाह का घर छोड़ के गैर अल्लाह के आगे सजदा कर रहा हूं। वो इस गलती को समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहेगा हाँ तुम वहां भी हो तो मुझे रोकते हो तुम्हें क्या पता इबादत का सीधा अलग होता है तादीम वाला सीधा अलग होता है। हम थोड़ा इबादत कर रहे हैं हम तो तादीम कर रहे हैं। भई ये तादीम तुमने 1400 साल के बाद समझी है सहाबा को भी समझ नहीं आई आले बैते रसूल को भी समझ नहीं आई अंबिया अलैहिस्सलाम को भी समझ नहीं आई तो खैर जनाब अबू बकर के अब्बा जो आए गुस्से में और खौलते हुए गुस्से में और कहा कि ऐना अबी बकरिन ऐना अबी बकरिन। तो माँ ने पूछा अबू बकर की मैंने क्या बात है उन्होंने कहा क्या बात है उसने जाके आज ये ज्यादती की मंदिर में गया और मेरे देवता को तोड़ा है। तो आपकी अम्मा ने माँ तो माँ ही होती है ना आखिर लेकिन अबू बकर की अम्मा ने देखा कि आज अबू बकर का अब्बा जोश में कहा अभी कुहाफा एक बात सुनो अबू बकर को कुछ न कहे। उन्होंने क्यों उन्होंने कहा इन इबनी हाजा लहू शान मेरा ये बेटा शान वाला बेटा है। उसने कहा कैसे तुम्हें कैसे पता है तो बीबी ने कहा बात सुनो अभी कुहाफा जब मैं हामला थी अभी बकर मेरे पेट में थे मैं फलाम मक्के की वादी से गुजर रही थी कि

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये शरफ जो मिला है सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। तो हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है हिजरत का, और अल्लाह ने साथ ये भी हुक्म दिया है कि अबू बकर को साथ ले जाना है। अल्लाह, इससे बड़ी को बात है कि नबी दरवाजे पे आए, वहां तो जिब्रील आया। जिब्रील जिब्रील और नबी में कितना फर्क है। अब अजमत किसकी बनेगी कि यहां नबी खुद दरवाजे पे आए हैं। अच्छा, अब जरा इसी मेराज और हिजरत की रात पे थोड़ा सा एक और पहलू से गौर करें कि मेराज वाली रात जब मेरे महबूब जाने लगे तो पहले इसरा है और फिर मेराज, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सीरत।

घोड़े पे कभी खच्चर पे घोड़े पे सफर किया हो ना जी, तो आप याद रखें कि जब आप मसलन चढ़ाई पे चढ़ेंगे फिर भी मसला होता है, फिर भी सवार को जरा संभलना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि सवार नीचे और घोड़ा आगे, और जहां उतरना पड़े वहां भी संभलना पड़ता है क्योंकि वहां भी खतरा होता है कि चूंकि जानवर उतर रहा है तो अगर आपका बैलेंस, अगर आपने उसकी लगाम पे अपने वजन को तवाजुन को बरकरार नहीं रखा इंशाल्लाह तो आप आगे पड़े होंगे और जानवर आपके ऊपर से गुजरेगा फिर तो। लेकिन अल्लाह पाक ने बुराक को ऐसी रफ्तार भी दे दी और रिवायात में आता है कि ये भी शान दे दी कि जब आगे चढ़ाई आए ना तो उसकी अगली टांगें जो है वो छोटी हो जाए ताकि मेरे नबी के तवाजुन में फर्क ना आए। जैसे जैसे जरूरत हो जाए पीछे टांगे ऊंची हो जाए, आगे नीची हो जाए, आगे ऊंची हो जाए। क्यों? अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर ऊंचे नीचे हो सकते हैं तो मेरे मदनी मुस्तफा के लिए सवारी का ऊंचा नीचा होना कौन सी बड़ी बात है। वमा ज़ालिका अल्लाह बिअज़ीज़, अल्लाह के आगे क्या कुछ। मौजज़ात का माना यही होता है कि अल्लाह नबी के हाथ में खर की आदत जाहिर करते। तो अब जनाब देखें, अब इस पे थोड़ा गौर करें इंशाअल्लाह ताकि अल्लाह करे के मकाम सिद्दीक समझ आ सके कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेराज वाली रात जो सवारी पेश की उसका नाम क्या था? बुराक। बुराक पेश की तो अगर जिब्रील लाया तो बुराक लाया, और हिजरत वाली रात जब सवारी की जरूरत आई तो सिद्दीक ने अपनी जान पेश की कि हजूर मेरे कंधों पर बैठ जाओ। ये सवारी देखें जनाब, वहां बुराक है, यहां खुद सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वअर्ज़ाहु। कितना बड़ा मकाम है कि वहां अल्लाह ने फरमाया बुराक ऊंची नीची हो जाओ ताकि मेरे नबी को तकलीफ ना हो। तो यहां हज़रत सिद्दीक ने जब देखा ना कि हजूर पांव के रख रहे हैं, अगले हिस्से पांव पे रख रहे हैं ताकि कुरैश मक्का पांव ने पहचान ले, लेकिन हजूर का तो खून मुबारक अंगलियों में जमा हो रहा है, तो हजरत सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मेहरबानी करके मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कंधे पे बैठ जाए, आज अबू बकर उठा के ले जाएगा। तो ये मकाम भी सिर्फ अबू बकर को मिला है कि हुजूर को कंधे पे बिठाए और जबल सौर की चढ़ाई चढ़ जाए। आप अकेले चढ़ के फिर देखें जरा सिद्दीक का ईमान, कभी आप उस चढ़ाई पे चढ़ें अकेले खाली हाथ, और फिर जरा गौर करें कि बोझ भी नबूवत का हो जिसको उठाने में ऊंटनियां गर्दन डाल के बैठ जाएं, जिससे कले नबूवत को हजरत अली ना उठा सकें। हजरत अली जैसा बदल मिन अब्दाल इस्लाम, यानी जो इस्लाम के बहादुरों में हैं, जो इस्लाम के सबसे बड़े जर्नेलों में हैं और सबसे बड़ी कवि और कुव्वत वाले लोगों में हैं, लेकिन जब हजूर ने फरमाया कि अली जरा नीचे हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर खड़े होकर ये तस्वीरें मिटा दूं, तो हजरत अली फरमाते हैं कि हजूर ने जब अपना कदम रखा मैंने कहा हजूर बस मैं नहीं उठा सकता, मैंने कहा हजूर बस मेहरबानी फरमाए मैं तहम्मुल नहीं कर सकता। हजूर फरमाए, हजूर मुस्कुराए, फरमाए अच्छा अली अगर तुम नहीं उठा सकते मैं बैठ गया तो तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। लेकिन यहां सिद्दीक का कमाल देखें कि वहां बुराक सवारी बने और यहां खुद अबू बकर सवारी बने और कहे कि या रसूलल्लाह मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और इसी तरह अब आगे आप इसी गार की रात को और हिजरत की रात के तकाबुल में गौर करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को बुलाया रज़ी अल्लाह अन्हु और आपने हुक्म दिया कि अली तुमने ये करना है कि मेरे बिस्तर पे सो जाना। अब ये भी बड़ी कुर्बानी है, वो मजाक नहीं, हम तो हजरत अली के भी गुलाम जैसे अबू बकर के गुलाम, अहले सुन्नत वल जमात वल अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सहाबा के भी गुलाम है, अहले बैत रसूल के भी गुलाम है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हाजिर या रसूल, आपने फरमाया तुम्हारे जिम्मे दो काम, एक तो मेरे बिस्तर पे लेट जाओ मेरी चादर लेकर, ताकि काफिर ये समझें कि हजूर अभी आराम फरमा रहे हैं घर में लेटे हुए, इधर उधर से देखेंगे ना, उस जमाने में कोई ये तीन तीन दरवाजे तो नहीं थे ना घरों के लगे हुए, ना कमरे साउंड प्रूफ थे, उधर से आगे कपड़ा ही डाल देते थे बस, टाट डाल दिया और दरवाजा हो गया। अब किसी ने देखना हो तो यूं करके देख लिया, झरी हो तो उससे देख लिया, तो वो जब देखेंगे तो उनको ये तसल्ली हो जाएगी कि अल्लाह के नबी अभी घर में सो रहे हैं तो हम जरा इत्मीनान से थोड़ा मक्के से और आगे निकल जाएंगे। और दूसरा काम ये करना है कि ये सारी अमानतें हैं मेरे पास मुशरिकीन मक्का की, उन लोगों ने मेरे घर में रखी थी अमानतें, किसी का सोना, किसी का चांदी, किसी का दिरहम, किसी का दीनार, तो जब मैं खैर से इंशाअल्लाह हिजरत के लिए चला जाऊं तो अमानतें सबको पहुंचा देना। हजरत का हाजिरी आसू। अच्छा, अब इसी पे थोड़ा सा तवज्जो

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो इसीलिए जरा अकल भी तो इस्तेमाल किया करें ना, कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी को पकड़ाने के लिए अबू बकर शोर कर रहा है। भैया ऊपर खड़े हैं, उन्होंने तो नहीं सुना है, हमने कहां से सुन लिया 1400 साल के बाद, 1200 साल के बाद किताबें लिखने की, शोर किया। तो अकल से भी ये बात गलत, और नकल से बात क्यों गलत है कि अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब है ना, वो तो अलीमुन बिज़ात सुदूर है, आलिम माकाना व मायकून है। अल्लाह के तो इल्म में है ना कि क़यामत तक कैसे कैसे लोग पैदा होंगे, कैसे कैसे लोग अम्बिया पे एतराज करेंगे, सहाबा पे एतराज करेंगे, आले बैत पे एतराज करेंगे, अइमे मुहद्दिसीन पे एतराज करेंगे, फुकहा पे एतराज करेंगे, उलमा व कुरा पे एतराज करेंगे। तो उसकी शान है, इल्म है, हिकमत है कि अल्लाह ने कुरान में लफ्जी वो इरशाद फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इज यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। याद रखो दो लफ्ज होते हैं, एक है ला तखफ, एक है ला तहज़न, हमेशा दिल में रखना। जब जाती डर हो तो वहां लफ्ज ला तखफ होता है, हमेशा याद रखें, जब बंदे को अपना डर हो। अल्लाह ने फरमाया
2: वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي

0: था कि मुझे गवर्नर बना के फिर कत्ल करने का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया है। उनने कहा कि कौन कौन दाखिल हो, नकद तो बाहर तो 150 आदमी था, और मैं तो जब अबू बकर का नाम आया तो मैं तो फिर आंखें नीचे करके बाहर निकल आया। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कुतिल मज़लूमन, और अल्लाह के नबी की बात भी सच्ची हो गई कि आपने पहले से आपको बता दिया था कि तुमने शहीद होना है और तुम अलल हक होगे और लोग तेरी खिलाफत की कमीज को उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम ना उतारना। सैयदना उस्मान आखिर वक्त तक अपने हक पे कायम रहे और मदीनतुर रसूल की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मदीने में खून फैलाने को पसंद न किया। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारज़ाहु व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर है तो अगले दर्स में फिर होगा मताएने उस्मान, ये हजरत उस्मान पे जो एतराजात हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के मनाकिब में एक अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की तौफीक से एक जामे चीज आ जाए कि जब दुनिया के सामने वो जाए तो कम अज कम वो मताइन भी पढ़ सके, वरना चूंकि सीरत की किताबों में आपको मताइन नहीं मिलेंगे, और जिन किताबों में मताइन होते हैं वहां सीरत नहीं होती, क्योंकि वो अलग किताबें होती हैं, वो अलग किताबें होती हैं। लेकिन इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, वही होगा जो अल्लाह तौफीक देंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, खुलफाए राशिदीन की फजीलत, मनकबत, अजीमत के ज़मन में हम अपने दुरूस का जो सिलसिला अल्लाह की रहमत से जारी किए हुए हैं, वो साबका दर्स में इख्तसार से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब, फजाइल और आखिर में हजरत की शहादत बयान अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आज के दर्स में मताइन सैयदना उस्मान, मताइन का माना यानी यूं आसान समझ लें कि तान यानी एतराजात, वो एतराजात जो मुखालिफीन ने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पे किए हैं अपनी किताबों में। और खुदा की कुदरत यह है कि जैसे हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल है कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम, हमारे दिलों में जैसे असहाबे रसूल का, खुलफाए राशिदीन का इकराब व एहतराम है, इसी तरह सैयदना अली, औलाद अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदा फातिमा, उनकी औलाद, उनकी जुर्रियात, उनके खानदान का भी एहतराम कि वो अहले बैत रसूल हैं। इसीलिए अब हमारा जो मुश्किल मसला है इसको आप जहन में रखें, वो ये है कि एक तरफ तो हम पर वो लोग एतराज करते हैं जिनको अहले बैत से मोहब्बत में गुलव है और सहाबा से इख्तलाफ है, यानी रवाफिज हो गए, शिया हजरात हो गए, और दूसरी तरफ हमारे लिए मुश्किल होती है कि वो नवासिब जो एतराज करते हैं, खवारिज जो अहले बैत के दुश्मन हैं, वो सहाबा को मानते हैं लेकिन अहले बैत के दुश्मन हैं, हजरत अली के दुश्मन हैं, औलाद अली के दुश्मन हैं, हसनैन के दुश्मन हैं, तो वो भी एतराज करते हैं, तो अहले सुन्नत को तो दोनों के तीरों का जवाब देना होता, क्योंकि हम जो दोनों को मानते हैं, हम जैसे सहाबा को मानते हैं वैसे अहले बैत को मानते हैं। अब सहाबा पे कोई एतराज करे कि चढ़ुशाली करे तब भी हमें जवाब देना है, और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई अहले बैत रसूल पे हमला करे तब भी हमने जवाब देना है। तो इसलिए मताइन भी दोनों तरफ से होते हैं। तो बहरहाल मुख्तसरन हम इन अबवाब को इंशाअल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे रमजान मुबारक करीब है और हमारे हजरात जो इसको तरतीब दे रहे हैं उनको इसीलिए इसमें कुछ जल्दी भी होती है कि रमजान आ गया तो मसला यह है कि फिर तो हज तक दर्स, उसके बाद इंशाअल्लाह जाके फिर हालात होते हैं। तो बहरहाल मताइन उस्मान में सबसे बड़ा तान जो करते हैं, जिनका उनकी किताबों में जिक्र है और जिसको उन्होंने लोगों के जहन में बिठाया है कि सैयदना उस्मान जंगे बदर में गायब,